0: गिलास तुमको भाभी
1: दिफकिन मस्चपकन तोंपन असवा जानतो चांच वितनो लारेक ओच फितेन गामी कुरियांग अच्छ कमी तोव मारनी फोक फरिंग अति फोक चेक पम नाच कराज नस कराज नारेक के ता फ्रेक चंग अतिन फोक फोच जुगन सेक फोच मेना मेंच उन लोक उन सेक कची वो फाफा फो त्याको नो त्याको इस त्याको मलोंग अति कलोन त्याव कुनियाफा वेलुन तंग अतिन फंग अम्प्यांग नंदाल फियावान हस तोक नचिम बाल चिस मन गन आम फो चारन मि फंग आम ओहच नम फिसिंग स्न बार बार फो जेच मे सुबिक माई फंतंबा अगजे मन बाद लावच मिंजन तोहच वेलुन तंग अतिन फ्रेसं क्यांग फित्या तकाल फित्या कन फंग त्याव न तो ओफंग फोजे मकोल चेंग मलागास मानं कास चंग चिम से वार चका जेच मालें क्या लोफंग मंदों चाचे मेरे हरे फो गास ता तो बे जाजा गास तेरा गास फो ओस्ट्रिन मेन करना आस्ट्रुजान तम राजंबे नि आज नुवान कुलाकं तन नरियन चार गास चार फरा नि कांत की तोंजा म्याक्च अंप फंता कोनांच फतन नि पुरो की गास कार अरो वक चा वोच ति फोक फे फंगा ति फोक दोस कोम नंगा से चतन जाजक केना मलाजमेंट ओच सा इंग ति मंगिन मंदों चाच मरे हरे फो जातो ति मेंगा चका राजक
2: नरीरीरन सासन फोतन नि सासन ति मफंतटन लांजन तेल लांजलांजन फोक कुंपितना मतकन लेल कुमांगिक फो मवेसटन फतेवा कोनांजी के त्याको जा त्याको अनो त्याको जरेओ दे त्याको चीका सचारा नि आनत देन फिफंका त्याफंग सिफंगा जंगन फ्यावाना मंपियावा चीका के त्याको माइता गासम जरा चीक अंगातन फलियांगा मारावरावु माइता सूर कमलांजा तुंट ममिंद्र म्यार कंगातन फाओरियांगा के चर्याको मा अगास्याना ना देम न्याफासा गास मिदीका फेर ममेंग तस्मित सीटरंगा गासे असंद्रातन पेलतांग नफराकुल चेंग चीकेच तुकुनी इंद्रगा गासे asa magnika andevozin'ny vola fa ny vola tsy mampiavagna fa mampiparitaka
3: e gase
2: toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitady ny verany eka mana iragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana ny taranakae ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranakae aza matahotra fa zagna ariny inao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza miagnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale
0: Shota tumpkula, shota tumpkvavi.

0: तुमको भाभी
1: दिवकिन मस्चाप कन तोपन असवा जान तो चांच वितनो लारेक ओच वितेन रामी कुरियां अच्छ कमी तोव मारनी फोक फरिंग अति फोक चेक पम नाच कराज नस कराज नारेक के तफ्रेक चंग अतन फोक फोट जुगन सेक फोट मेना मैं चुन लोक न सेक कची वो फाफा फो त्याक वनो त्याक विस त्याक मलोंग अति कलोन त्याव कुनी आफा वेलुन तंग अतन फंग अप्यांग नंदाल फियावान हस तोक न चिंबा आल चिस मन गन आम फो चारन मी फंग आम ओहच नम फीस न बार बार फो जेच में सुबिक माई फंतंबार अगजे मन बाद लाव ची मिंजान तोहच वेलुन तंग अतन फ्रेस क्यांग फित्याताकाल फित्याकन फंग त्यावंग न तो ओफंग फोजे मकोल चेंग मलागास मानं कास चंग चिम से वार चका से चमालें क्या लोफंग मंदों चाचे मेरे हरे फो गास ता तो बे जाजा गास तेरा गास फो ओचुन मेन करन आचुजान तम रजंबे नि आज नुवान कुला कंग तन ननरियन चार गास चार फरा नि कांत की तोंजा म्याक अम पफंता कोनांत फतन नि पुरो की गास सिकार अरो वक चवोच तिफोक फेफंगा तिफोक दोस कोम नंगा से चतन जाजक के ना मलाजमेंट ओचा सा इंग ची मन्यून मंदों चाचा मरे हरे फो जातो ची मेंग अच्छा कराजक
2: नरीरे रीरन सासन फोटन नि सासन ची मफंतटन लंजन तेल लंजन लंजन फुक को इंपीट ना मत कन लेल को मंगिक फो मावेस अटन फ्टेवा को नंजी के त्याकुजा त्याकु अनो त्याकुजा रियो दे त्याकु ची के सचारा नि आन अट देन फिफंग का त्याफंग सिफंग अजंगन फ्यावाना मंपियावा का ची के त्याकु माइट गास मजारा ची agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na dia amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gasy asandratona ampelatagnina fa raha kolontsaigna tsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vola fa ny vola tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gasy toagna amin'n'orom-bato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitady ny very aneka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranake ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza miagnatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy iakale
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: फालियो फंते न वे न फालियो फंते न दे चीना ताऊ मिहिची वेट का सांबट फियाना नुल मिची फाफालियो फंते न चमाना पियांगारन अंपिगु का मामी निसंबरावारन न फालियो फंते न चितुसा चिन्यातु यंदंदंदन वूला व्यंतिलंबातु फाइजकन ते न मुई चमित लानग चाराइक चुस नुआवंतरानग. Une fois le vent.